0: हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
1: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूँ।
2: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
1: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
3: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
2: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है, जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता, और दिल किसके पास नहीं है? और यह भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
1: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता, और नदी वेग से बहती है।
2: अत्यंत सुंदर।
4: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
2: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
1: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
5: मिथिलेश की जय हो। मिथिलेश की जय हो।
3: दरबार में बैठे सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे।
1: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
4: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा।
2: अन्य सभी हंस रहे हैं, ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं?
1: आप सब अपने आप को महान समझते हैं, और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है? परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों, मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
2: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
1: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
2: बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी। वाक

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बाजार की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ संपादक एके भट्टाचार्य. भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: So benchmark domestic indices gain nearly 1%. Sensex surges over 650 points. Nifty settles above 22,750. Cabinet approves establishment of 10,000 crore rupees fund for long-term equity investments in small and medium enterprises. And World Bank raises India's GDP growth projection to 7.1% for the current fiscal.
1: घरेलू शेयर बाजार में लगभग 1% की बढ़त दर्ज की गई. सेंसेक्स 650 अंक से अधिक बढ़ा. निफ्टी 22,750 के ऊपर बंद हुआ. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है. और वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है.
0: And before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own

0: research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में किस तरह से शेयर बाजार का व्यवहार रहा. घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 1% की बढ़त हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 1% से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.5% से अधिक की बढ़त हुई.
0: सो बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस रोज नियरली 1% टुडे. द सेंसेक्स सर्ज 685 पॉइंट्स टू क्लोज एट 73,068. द निफ्टी क्लाइम्ब 220 points to settle at 22,776. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index jumped 1.1% and the small-cap 100 index advanced over 1.5%.

0: 685 points to close at 73,068. The Nifty climbed 220 points to settle at 22,776. In the broader market, at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index jumped 1.1% and the Small-Cap 100 Index advanced over 1.5%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में ट्रेंट लगभग 13%, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% से अधिक और हिंदुस्तान यूनिलिवर लगभग 3% बढ़े. नुकसान में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में टेक महिंद्रा 2.3%, टाइटन 1.3% और बजाज फाइनेंस में लगभग 1% की गिरावट आई.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 21 out of 28 sectors edged upwards. Among the top gainers, telecommunication jumped 2.3%, capital goods rose 1.8%, and industrials added 1.6%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt, as well as hospitals, shed around 0.8%. Mid-small private bank fell 0.7% and focused IT dropped 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,816 companies advanced, 1,562 declined and 245 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 12 पैसे कमजोर होकर 96.42 रुपए पर बंद हुआ. भट्टाचार्य जी, शुरुआत करते हैं चर्चा की और जानना चाहेंगे हम आपसे कि आज जो हमने बाजार में बढ़त देखी है लगभग 1% की, क्या उसमें कोई ऐसा प्रमुख कारण रहा या मिले जुले कारण थे जिससे कि बाजार में ये बढ़त हमें देखने को मिली?
2: देखिए, दो कारण साफ नजर आ रहे हैं. पहली बात तो ये है कि पिछले हफ्ते में हमने जो स्टॉक मार्केट का जो रुख देखा उसमें काफी गिरावट हमने देखी. करीबन 2% या 2.5-3% की गिरावट हमने पिछले हफ्ते में देखी
1: जी.
2: और कल उसका रिकवरी हुआ है और आज भी उसका रिकवरी हो रहा है. तो जिसे स्टॉक मार्केट में जिस जो उतराव और चढ़ाव का ये सिलसिला जारी है. और दूसरा कारण ये है कि कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्विमासिक जो मौद्रिक समीक्षा की जो कदम वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसका ऐलान करेगी कल. उसका एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट शायद 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाए. तो उसके कारण जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं उनकी जो वेटेज सेंसेक्स और निफ्टी में काफी अच्छी होती है, उसके लिए स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी हुई. क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फाइनेंशियल सेक्टर को के मार्जिन में बढ़ोतरी होती है, उससे उनका जो इनकम लेवल है वो भी अच्छा होता है. और क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा है, अगर क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है उसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उनकी आमदनी में भी काफी इनकम में काफी इंक्रीज होती है. तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि दोनों कारणों के लिए स्टॉक मार्केट में आज एक रिकवरी और एक मौद्रिक नीति की जो एक एक्सपेक्टेशन जो है
1: जी.
2: उसके लिए
0: AKB, we'll come to the MPC later on, but first of all, I'd like to draw your attention to the broader market today. In the mid-cap, we saw 1.1% of an uptick, and in the small-cap, 1.5%. As we all know, over the past 6 months or so, these two sectors, you know, the mid-cap and the small-cap, have bled like anything, and investors are really in a soup. So now, can we say that the green shoots are really coming up, and in the coming times, it will be, you know, growing more and more from now on?
2: You are right that we have seen this duality of the Indian stock market in this way, that while the large cap stocks are not doing that well, but the mid cap and the small cap, which had seen a major losses in the last few months, and now they seem to be coming back to life, so to say, and that is also because they are far less expensive than the large cap stocks. So if you are looking at value buying, or if you are an investor If you want to get into a position in the

0: निकेई लगभग 1% से अधिक बढ़ा, वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक लगभग 1% नीचे आया। भट्टाचार्य जी, हम जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देख रहे हैं, जो कि अभी भी उसी तरीके से कमोबेश बरकरार है, इसमें आप जो एशियाई शेयर बाजार है उस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी कि किस तरह से आप इनका प्रदर्शन का अवलोकन कर पा रहे हैं।
1: देखिए, जो एशियन मार्केट्स जिसकी आपने जिक्र की
0: जी,
1: जापान को कहिए या हैंगसेंग हांगकांग कहिए या सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स को कहिए, सब मार्केट में जो उनकी जो एक्सटर्नल सेक्टर की जो इम्पैक्ट जो है वो काफी अच्छा है। सारे जो मार्केट्स हैं एशियन मार्केट्स, ये मार्केट या जापान कहें या सिंगापुर कहें या हांगकांग कहें या साउथ कोरिया कहें
0: जी,
1: उनको सारे एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस है उनका काफी, जैसे भारत भी एनर्जी सेक्टर इंडिपेंडेंस है, और इस तरफ इस समय जो एनर्जी मार्केट में जो खलबली मची हुई है उससे जिनको स्टॉक मार्केट में वो उसी को वो कैप्चर दिखा रहा है कि जो अनसर्टेनिटी और नर्वसनेस दिखा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब तक ना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का जो हंगामा चल रहा है जो
0: जी,
1: और एक स्टेबल एक रेजोल्यूशन ये क्राइसिस का जब तक ना एक रेजोल्यूशन एक निर्णय इस तरफ उस तरफ ना होगा, तब तक मैं समझता हूँ एशियाई मार्केट में ये इंस्टेबिलिटी अनिश्चितता का दौर चलता रहेगा।
0: आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये फंड उन छोटे और मध्यम उद्योगों को लंबी अवधि की इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगा जिनमें विकास की अच्छी संभावना है और जो अपने कारोबार को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।
2: ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करना ये ग्रोथ फंड का मेजर ऑब्जेक्टिव। प्रोफेशनली मैनेज होगा, जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल हो जिन एमएसएमईज में, उन एमएसएमईज को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस इंडस्ट्री बॉडीज प्लस बैंक्स, इन सब का इनपुट लेके एमएसएमई ग्रोथ फंड को संचालित किया जाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं, इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: भट्टाचार्य जी, छोटे बड़े एंटरप्राइजेस को सरकार वैसे भी फंड देती है, लेकिन ये किस तरीके से अलग है?
1: देखिए, जो ये जो है कि ये उनकी जो इक्विटी को ग्रोथ, मतलब इक्विटी का ये मतलब ये हुआ कि अगर जो छोटे और मझले उद्योग जो हैं उनको इक्विटी की बहुत सख्ती से उनको मिलती है और उनको उनको जिस तरह से उनको इक्विटी के लिए पैसा बटोरना पड़ता है वो काफी कॉस्टली होता है। और ये इससे दो तरह का उनको लाभ होगा। एक तो होगा कि छोटे और मझले उद्योगों को जो इक्विटी के लिए जो पैसा होगा वो कम दामों में, कम इंटरेस्ट कॉस्ट में सरकार से मिलेगी। और दूसरी बात यह है, क्योंकि इक्विटी होगा इसका मतलब ये है कि और मछले छोटे मछले उद्योग जो इक्विटी इस्तेमाल करके नया उद्योग लगाते हैं उसे उनकी जो नौकरी को बढ़ावा देने की, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में उनको ग्रोथ लाने की उसकी क्षमता जो है वो काफी अच्छी होती है, क्योंकि वो उतना ऑटोमेटेड नहीं होते हैं। सो उससे जो नौकरी की संख्या बढ़ती है और उसके साथ साथ क्योंकि जो छोटे और मझले उद्योग की जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स की जो शेयर है वो करीबन 48% है, 48

0: In spite of the rainfall problems, India's kharif acreage has been very marginally lower than the previous year's kharif acreage. So which means if all goes well, the kharif output will not be substantially lower in the, actually indeed, given the productivity trends, it might be even higher. And there are the super El Nino fears that are engaging the minds of India's policy planners and policy makers. But there is an early indication that is available, which is the Indian Ocean climate trends suggest that probably the impact of the super El Nino may be contained somewhat, as a result of which the Rabi output may not be adversely impacted. Only time will tell that what kind of an impact finally plays out on Indian agriculture in the current year. But right now, kharif output is by and large has been kept unharmed. And Rabi output, if indeed the Indian Ocean, the weather movement actually helps douse or contain the impact of the super El Nino, then hopefully we'll be better off.
1: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में देश में ऑटोमोबाइल की वार्षिक खुदरा बिक्री 31.8% बढ़कर 25 लाख इकाई से अधिक हो गई है. ये अब तक का सितंबर महीने का सबसे उत्तम रिकॉर्ड है. सितंबर में सामान्य वाहनों की बिक्री वार्षिक आधार पर 32.1% और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 37.6% तक बढ़ी. इस दौरान दो पहिया वाहनों की बिक्री में 33% और तीन पहिया वाहनों की बिक्री में 22% की वृद्धि हुई है. भट्टाचार्य जी, मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी समय की परिधि को देखते हुए.
0: देखिए, जो ग्रोथ जो है वो बहुत ही काफी स्टेबल ग्रोथ है, हाई ग्रोथ है. पर आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये सितंबर का ग्रोथ पिछले साल जो सितंबर की जो ग्रोथ थी उसमें थोड़ी बहुत हानि पहुंची थी, क्योंकि जीएसटी रेट जो बदले गए थे उसमें काफी थोड़ी बहुत सेल्स जो है वो कम थी, क्योंकि सितंबर 3 का अनाउंसमेंट सितंबर 22 से लागू किया गया था, तो काफी जो सेल्स जो है वो पोस्टपोन हो गई थी. तो इसीलिए मुझे लगता है सितंबर का ग्रोथ काफी अच्छा है.
2: राइट केवी. एंड इन सम अदर स्टोरीज, इंडिया सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ एक्सेलरेटेड टू अ 3-month हाई इन सितंबर लेड बाय स्ट्रांग डोमेस्टिक डिमांड एंड शार्प राइज इन न्यू ऑर्डर्स. द सीजनली एडजस्टेड एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स रोज टू 55.2 लास्ट मंथ फ्रॉम 54.1 इन ऑगस्ट, marking the strongest expansion since June this year. It remained above the 50 mark that separates growth from contraction. And the new merchant discount rate MDR framework will come into effect from the 15th of this month. National Payments Corporation of India has said street vendors receiving up to 1 lakh rupees per month through UPI QR codes under the person-to-person merchant category will continue to enjoy zero MDR on all transactions. And global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.4% down at $97.93 per barrel. West Texas Intermediate was trading over 2.4% lower at $87.25 per barrel at the time of writing this report. AKB, thank you so much for having joined us. And
1: बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में आने के लिए.
0: नमस्कार, थैंक यू.
1: जी जी, जाते जाते एक नजर आर्थिक सुर्खियों पर.
2: यस, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज गेन नियरली 1%. सेंसेक्स सर्जेस ओवर 650 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 22,750. कैबिनेट अप्रूव्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज फंड फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. एंड वर्ल्ड बैंक रेजेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7.1% फॉर द करंट फिस्कल. एंड That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திருக்கே டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी. श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा. श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है.
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं. उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया. इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा. ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी. सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी वीबीजी रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है. नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं. इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है. सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है. विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी. पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना. इसके बाद पुलिस ने कानून के अंतर्गत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं. इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बताया कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी वापस चले गए. हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए. स्थिति को बिगड़ने से रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया.

0: नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें IAS और IPS अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जाँच की जाएगी। FIR दर्ज करने के बाद CBI ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। विधि विभाग ने बताया कि यह निर्णय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद लिया गया। मंत्री परिषद ने 22 सितंबर 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi after the Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistics planning in the country. Mr. Vaishnaw said the Cabinet has also given its nod to the establishment of a 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises.
2: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस
3: MSME ग्रोथ फंड विल बी एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू MSMEs विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड MSMEs विद नियरली हाफ ऑफ इट्स कॉर्पस एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
2: मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड MSMEs जिनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अभी आ रही है।
1: Prime Minister Narendra Modi in a social media post called the move a major boost to the MSME sector and said the new authority will promote better coordination and data-driven planning. Senior BJP leader and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has criticized the Congress party and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, for repeatedly targeting the Election Commission of India and other constitutional bodies. Talking to the media in New Delhi, Mr. Rijiju said political parties should serve the people and accept the electoral mandate. Earlier in the day, opposition parties held a protest march from Parliament House to the headquarters of the Election Commission of India in the national capital over alleged irregularities in the special intensive revision process and demanded the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Later, leader of the opposition in the Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi, along with party leader Priyanka Gandhi Vadra and other supporters, entered Akashwani Bhavan and staged a protest on the premises. With regard to the opposition's protest, the Election Commission has clarified that no political party had sought an appointment till 4 p.m. to meet the Commission through its representatives. In a press statement, the Commission said that around 4 p.m. it received information from the Delhi police that a delegation of members of Parliament led by the leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, wanted to meet the Commission and submit a memorandum. The Election Commission considered this request unusual and said it could not be accepted. With regard to opposition's march, the Delhi police said that no request was forwarded to it for the proposed march and therefore no permission was granted for the same. It said that in view of this, section 163 of BNSS had been imposed.

0: இதுவரை இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் இனிய திரைப்பட பாடல்கள் கேட்டு ரசித்தீர்கள். இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து. அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी. श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा. श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है.
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है. उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया. इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा. ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी. सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी वीबीजी रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है. नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं. इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है. सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्य योजना का मसौदा जारी किया है. इसका उद्देश्य मौजूदा कमियों को दूर करना और सेवा क्षेत्र का व्यापक सूचकांक तैयार करना है. मंत्रालय ने कहा कि सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजन के तौर पर स्थापित हो चुका है और देश के सकल मूल्य वर्धन में आधे से ज़्यादा योगदान देता है. असम में भारतीय जनता पार्टी ने सिलचर नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल किया है. कल 40 वार्ड के लिए वोट की गिनती हुई. बीजेपी ने इनमें से 3 वार्ड में जीत दर्ज की. इसके अलावा वार्ड नंबर 9 और 20 से बीजेपी के 2 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं. इस तरह 42 सदस्यीय नगर निगम में बीजेपी की कुल सीट की संख्या 32 हो गई है. इसके साथ ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है. वहीं 6 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे. कांग्रेस और असम गण परिषद ने 2-2 वार्ड में जीत दर्ज की. विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी. पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना. इसके बाद पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं. इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हैं, स्थिति पर लगातार नजर

0: இதுவரை நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சியில் இனிய திரைப்பட பாடல்கள் கேட்டு ரசித்தீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தியறிக்கை டெல்லியிலிருந்து. அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी. श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा. श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है.
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है. उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया. इसमें 10,000 करोड़ रुपीज का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा. ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी. सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी वीबीजी रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है. नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं. इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है. सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है. रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है. इसके अंतर्गत 40 घंटे से अधिक की यात्रा वाली 11 लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की पहचान की गई है. इन रेलगाड़ियों में पूरे सफर के दौरान साफ सफाई और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को पत्र भेजा है. विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी. पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना. इसके बाद पुलिस ने कानून के अंतर्गत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं. इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हैं, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी लोगों से शांति बनाए रखने तथा पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है. इसमें IAS और IPS अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जाँच की जाएगी. FIR दर्ज करने के बाद CBI ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की. जम्मू कश्मीर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है. विधि विभाग ने बताया कि ये निर्णय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद लिया गया. मंत्रिपरिषद ने 22 सितम्बर 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. भारत ने वेस्ट इंडीज़ को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है. श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है. श्रृंखला का दूसरा मैच

0: ஒலித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இன்று நெஞ்சும் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान

0: अनुसंधान योजना मूल्यांकन निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी वीबीजी रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत 40 घंटे से अधिक की यात्रा वाली 11 लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की पहचान की गई है। इन रेलगाड़ियों में पूरे सफर के दौरान साफ सफाई और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को पत्र भेजा है। हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है। 5 अक्टूबर तक मंडियों में करीब 7,35,000 मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार खरीद एजेंसियां अब तक 2,57,000 मीट्रिक टन धान खरीद चुकी हैं। केंद्र सरकार ने इस साल हरियाणा से 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में देश में ऑटोमोबाइल की वार्षिक खुदरा बिक्री के आधार पर 31.8% बढ़कर 25 लाख से अधिक इकाई हो गई है। सितंबर में सामान्य वाहनों की बिक्री वार्षिक आधार पर 32.1% और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 37.6% तक बढ़ी। इस दौरान दो पहिया वाहनों की बिक्री में 33% और 3 पहिया वाहनों की बिक्री में 22% की वृद्धि हुई। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के प्रबंध किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi after the Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम

उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी VBG रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन काम को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्य योजना का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा कमियों को दूर कर सेवा क्षेत्र का व्यापक सूचकांक तैयार करना है। मंत्रालय ने कहा कि सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजन के तौर पर स्थापित हो चुका है और देश के सकल मूल्य वर्धन में आधे से ज्यादा योगदान देता है। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के अंतर्गत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हैं, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी लोगों से शांति बनाए रखने तथा पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें IAS और IPS अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जाँच की जाएगी। FIR दर्ज करने के बाद CBI ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े अयोध्या से कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश सह प्रभारी डॉ मेधा कुलकर्णी लखनऊ के हजरतगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल से जुड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद से कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये प्राधिकरण देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का यह फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी वापस

0: चले गए। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए। स्थिति को बिगड़ने से रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जाँच की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना है। पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना भी इसके उद्देश्य में है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्य योजना का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा कमियों को दूर करना और सेवा क्षेत्र का व्यापक सूचकांक तैयार करना है। मंत्रालय ने कहा है कि सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजन के तौर पर स्थापित हो चुका है और देश के सकल मूल्यवर्धन में आधे से ज्यादा योगदान देता है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं ने कल कजाकिस्तान के ओस्केमेन में संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद 2026 के अंतर्गत युद्ध अभ्यास किया। भारतीय सेना के अनुसार दोनों देशों के सैनिकों ने अखमिरोव प्रशिक्षण क्षेत्र में रास्ता तलाशने का अभ्यास किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi made the statement while interacting with members of the Global System for Mobile Communications Association, GSMA Board, ahead of the India Mobile Congress, scheduled to be held from today and will continue until the 10th of this month in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi's journey in public life began today and he is completing 25 years in public life this year. To mark the occasion, Prime Minister Narendra Modi and BJP National President Nitin Naban will address the Viksit Bharat Sankalp Sabha today. Along with the addressees of the Prime Minister and the BJP National President, several senior party leaders will join the program virtually from different parts of Uttar Pradesh. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi after the cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistics planning in the country. Mr. Vaishnaw said that the cabinet has also given its nod to the establishment of a 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises.
2: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का
3: 10,000 करोड़ रुपीस MSME ग्रोथ फंड विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू MSMEs विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड MSMEs विद नियरली हाफ ऑफ इट्स कॉर्पस एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
2: मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड MSMEs जिनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अभी आ रही है।
1: The government has notified the